0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान ने खलीजी ममालिक को अमरीका के खिलाफ खबरदार किया है। ईरान के चीफ और जनरल स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्ला अब्दुल्लही ने खलीज फारस के साहिली ममालिक से खिताब करते हुए अमरीका की मुमकिन फौजी कार्रवाई में उसकी हिमायत न करने का मुतालबा किया। खत्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों और खसूसन फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारों की नकल व हरकत पर करीब से नजर रखने का जिक्र करते हुए अब्दुल्लही ने इस बात पर जोर दिया कि यह सूरत हाल हमारे इल्म में लाए बगैर मुमकिन नहीं होगी। खलीजी हुकूमतों को बराह रास्त खबरदार करते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने वाजे किया कि अमरीकी फौज को फराहम की जाने वाली किसी भी किस्म की सहूलत या मदद को अमरीका के साथ खुला तावन समझा जाएगा। ईरान खित्ते के ममालिक से यह मुतालबा कर रहा है कि वह अपनी सरजमीन और फौजी अड्डों को अपने खिलाफ किसी भी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें।
2: मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेहरान पर समुद्री आमदोरफ्त को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद करने के बाद ईरान के साथ तमाम तजारती और मालियाती लेन देन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। ताहम ईरान ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद किया और खबरदार किया है कि ऐसे दावे इलाकाई एतमाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
1: गजा शहर में एक पुरहजूम कैफे पर इसराइल ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत कम अज़ कम 6 फलस्तीनी हलाक और 12 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में अलशाती के इलाके में मौजूद हमास के कमांडरों को निशाना बनाया गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर इसराइल की नस्लकुशी की जंग में अक्टूबर 2023 से अब तक 73,000 से ज़्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। आखिरी जंगबंदी के नफाज के बाद से कम अज़ कम 1,266 अफराद हलाक हुए हैं।
2: जमहूरिया कांगो में तस्दीक शुदा एबोला केसों की तादाद 5,000 से तजावज़ कर गई है। कांगो हुकूमत के मंगल की रात जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एबोला वायरस के मरीजों की तादाद 5,000 से बढ़ चुकी है और सेहत के हुकाम ने खबरदार किया है कि इस मोहलिक बीमारी पर काबू पाने के लिए जारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। इदारा सेहत आमा के मुताबिक मुल्क में एबोला की 17वीं वबा जुलाई के अख्ताम तक मरीजों की तादाद के लिहाज से तारीख की सबसे बड़ी वबा बन गई और हफ्ते के अख्ताम तक वबा के बायस होने वाली अमवात की तादाद 2,378 तक पहुंच गई है। सूरत हाल से मुतलिक अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इदारे ने 5,021 केस रिकॉर्ड किए हैं। इस तादाद के साथ ये वबा 2014 से 2016 के दौरान मगरबी अफ्रीका में फैलने वाली एबोला वबा के बाद मरीजों और अमवात दोनों लिहाज से दुनिया की दूसरी बदतरीन वबा बन गई है। ये वबा एबोला वायरस की बंडी बोगियो किस्म की वजह से फैली है। इस वायरस की फिलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या इलाज दस्तियाब नहीं है।
1: जिम्बाब्वे की झील कारेवा में गुज़िश्ते हफ्ते होने वाले कश्ती के हादसे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 94 हो गई है, जिसके बाद ये मुल्क का अब तक का सबसे मोहलक तरीन हादसा बन गया है। हुकाम का कहना है कि जब यह कश्ती उलटी तो इसमें तकरीबन 180 मुसाफिर सवार थे, जबकि लाशों की तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं।
2: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर आयद किए जाने वाले 50% इजाफी टैरिफ को 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करदा एक बयान में कहा है कि कनाडा के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तनाजुर में उन्होंने कस्टम ड्यूटी के फैसले को मुअख्खर कर दिया है। ट्रंप ने बताया है कि हतमी दस्तावेजात की तकमील की शर्त पर यह फैसला किया गया है। वाशिंगटन इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह कनाडा पर अमरीकी मसनूआत के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाते हुए इस मुल्क से दरामद की जाने वाली मखसूस अशिया पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। बहुत सी मसनूआत पर मुहित ये टैक्स रेगुलेशन आज ही से नाफुजुल अमल होना था।
1: और चीन ने लैंडिंग करने वाले रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया है। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक चीन ने बुध के रोज़ पहली मरतबा एक दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट के पहले मरहले में खुश्की से खुश्की पर लैंडिंग का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा अपनी नौयत की पहली कामयाब कोशिश है। 66.1 मीटर लंबे U-3Y2 रॉकेट को मुल्क के शुमाल मगरब में वाक़ डोंगफैंग कमर्शियल स्पेस इनोवेशन पायलट जोन से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 9 इंजनों पर मुश्तमिल पहले मरहले यानी बूस्टर मरहले में परवाज की और लॉन्च पैड से 390 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़ गानसू सूबे के एक मखसूस लैंडिंग मकाम पर वापस उतर गया। मुकर्रा मकाम पर बहिफाजत लैंडिंग के साथ रॉकेट की ज़मीन से ज़मीन पर महफूज लॉन्चिंग और लैंडिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले ने अपने साथ लगे होंगहू 03 सेटेलाइट को पहले से तयशुदा मदार में पहुँचा दिया है। यह मिशन चीन की दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।

क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की एक बूंद किसी सल्तनत की तकदीर को कितनी बार बदल सकती है? या क्या पानी का कोई रास्ता सिर्फ खुश्की दूर करने का जरिया होता है?

0: कैलेंडर का जिक्र करेंगे जो मौसमों की रफ्तार तय करते हैं, और उन अव्वलीन माहिरीन फलकियात से मिलेंगे जो सितारों को देखकर वक्त का हिसाब लगाते थे। हम मिलकर फलस्तीन की इन पोशीदा कहानियों की खोज जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।

आपने इसके बारे में नज़मों में जरूर पढ़ा होगा, खुशबू में महसूस किया होगा, बागात में देखा होगा। क्या आपको इसका जायका चखने का इत्तफाक हुआ है? गुलाब आपके तस्वर से भी कहीं बढ़कर है। यह हजारा सालों पर महित एक लज्जत शफा बख्श इलाज और रस्म रवाज भी है। एक फूल का तस्वर करें जो नज्मों का मौजू रहा है, तस्वीरों का मौजू, खुशबू का मंबा रहा है। इसकी महक एक शहर की पहचान बन चुकी है। इसकी रंगत इश्क मोहब्बत की अलामत है, जहां इस तारीफ का मालिक गुलाब का फूल ही है। लेकिन आज हम आपको गुलाब के एक ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे जिससे शायद आप भी मारूफ ना हो, यानी गुलाब बतौर खुराक। तुर्की की अख्तेनिस यानी मेडिटेन यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार शेमा नूर गुनेश की राय से भरपूर और टीआरटी खबर के लिए और पेजेरिकली की तरफ से कलम बंद करदा मजमून से तारीफ पेश खिदमत है। गुलाब एक कदीम फूल है जिसका तल्लुक रोज़ेसिया पौधों की फैमिली से है। इसकी सैकड़ों कुदरती किस्में हजारों की तादाद में हाइब्रिड अकसाम है। तुर्की में इसकी डेढ़ों अकसाम पैदा होती हैं। सफेद गुलाब, क्रिस्प रोज, रोज शिप, एवर ब्लूमिंग रोज, मकामी गुलाबी गुलाब, शिलांग गुलाब वगैरह वगैरह, और खासकर दुनिया भर मरूफ स्पार्टा गुलाब। शहर स्पार्टा की पहचान गुलाब ही है। त्यौहार हर साल मुनक्की होते हैं, खेत गुलाबी रंगों में डुबोए जाते हैं, लेकिन गुलाब की अहमियत अब सिर्फ लैंडस्केपिंग और कॉस्मेटिक्स तक महदूद नहीं रही। हालिया वर्षों में इसे जायके के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। शेमा नूर गुनेश का कहना है कि गुलाब की इंसानों को इतने अरसे तक अपने शहर में कैद करने की कई अहम वजूहत हैं। इसके खुशबूदार साथ जो तालों पर देर पा असर छोड़ती है, इसकी जहरी शक्ल जो पेशकश को बढ़ाती है, और इसकी मुनफरद खुशबू। इनके अलावा इसके फेनोलिक और बायो एक्टिव अज्जा की बदौलत हिफ्जान सेहत के खास गुलाब को बादशोर सार्फिन के लिए खास तौर पर पुरकशिश बनाता है। तो किचन में गुलाब का इस्तेमाल कैसे और कहां होता है? गणेश का जवाब इंतहाई जामे है। खुश मेवे की शक्ल में, आटे के मसनूआत मीठे में, मशरूबात में अरके गुलाब के तौर पर, ताज़ा पंखड़ियों की शक्ल में पेशकशों और सेहतमंद कुदरती रंग के तौर पर। ये सदियों से तुर्क खानों में जाम, टर्किश डिलाइट, शरबत, कंपोस्टो, कुलाच, मिठाई, माजून और शुरा यानी मीठी खीर की किस्म में इस्तेमाल होता आ रहा है। गुलाब के फायदे सेहत के काफी हैरत अंगेज है। गुनेश का इस मौजू पर कहना है कि बुलंद सतह की एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी और हयातियाती अज्जा के साथ गुलाब गजाई के लिहाज से एक कीमती खोटनी फूल है। मजीद बनाए इसकी फरख्त बख्श मह की बदौलत से नफसियाती अमराज जैसे जहनी तनाव, सरदर्द और नींद की खराबी के लिए भी बुरकार लाया जाता है। इंसान कदीम जमाने से गुलाब के सेहत के फायदे को दरियाफ्त कर चुका था, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जड़ी बूटियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अहदे उस्मानी में भी गुलाब की बेशतर मसनूआत जैसे इसका पेस्ट, सिरप, जाम, अरक, शरबत, तेल और शहद अद्वियात के तौर पर तैयार और इस्तेमाल की जाती थी। शैमा नूर गुनेश का कहना है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का मुशाहदा होता है कि अब सार्फिन अपने खाने पीने के आदात को दोबारा तैयार करने की कोशिश में है और नित नए जायके आजमा रहे हैं। इस रुझान से गुलाब को रवायती जदीद दोनों खानों में शामिल होने का मौका मिला है। सोशल मीडिया तरकीबें तैयारी का अवाम की तरफ से पोस्ट करने के अरूज के साथ गुलाब की बुनियाद की तरकीबें भी कई गुना बढ़ गई हैं। रेस्टोरेंट में इनका इस्तेमाल